0: आप रहे हैं।
1: हेलो लिसनर्स, यू आर लिसनिंग टू MOP कम्युनिटी रेडियो 107.8। तो इंडिया इज मेनली ए लैंड ऑफ विलेजेस। देर आर मेनी सिटीज एज वेल एज विलेजेस इन द कंट्री। सम ऑफ द सिटीज लाइक दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता आर वेरी बिग। दे हैव अ पॉपुलेशन ऑफ सेवरल मिलियंस। लाइफ इन दिस बिग सिटीज इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ इन अ विलेज। लेट अस हियर कंसीडर इन ब्रीफ द लाइफ इन अ बिग सिटी एंड अ विलेज एंड पॉइंट ऑफ सम ऑफ इट important advantages and disadvantages. You may be wondering that why I am talking about this as today, because in today's program we are going to talk about the city life and the village life. Firstly, we have to know the difference between a village and a city. What is a village? A village is nothing but a clustered human settlement or community, larger than a hamlet, with a population ranging from a few hundred to a few thousand.

नमस्ते चेन्नई, मैं हूँ आपकी आरजे जया और आप सुन रहे हैं एमओपी कम्युनिटी रेडियो 107.8 FM। आर रेडियो, आर कम्युनिटी, आर प्राइड। हम बीए जर्नलिज्म फर्स्ट ईयर की छात्राएं आपको बताना चाहते हैं कैसे छेड़खानी लड़कियों के मानसिक संतुलन को प्रभावित करता है। हम आज की शुरुआत भगवान की आराधना से करेंगे। यह आराधना श्रुति, ऋतिका और भाविका प्रस्तुत करेंगे।

0: सर्वथा। भगवान को याद करने के बाद अब हमारे साथ बैठी लड़कियाँ आपको छेड़खानी के बारे में कुछ बताएंगी। संध्या, आप छेड़खानी के बारे में क्या जानते हैं?
1: छेड़खानी वह होता है जो राह चलते लड़कियों को छेड़ा जाता है, कभी सीटी मार के तो कभी उन्हें बुरी नजर से देखते, कभी पीछा करते हैं गाड़ी से, कभी गाड़ी का हॉर्न मारते हैं।
0: मुस्कान, किस वजह से यह छेड़खानी होती है?
2: जब लड़की लोग छोटे कपड़े पहनते हैं तभी भी लड़के घूरते हैं, जब लड़की लोग सलवार या कुर्ती पहनते तभी भी लोग घूरते हैं, और अगर वो एक साड़ी भी पहने तब भी लोग घूरते हैं। लड़के इतनी गंदी सोच रखते हैं, इतनी गंदी नजर से देखते, तो हमारे देश आगे कब बढ़ेगा? आप अपनी बेटियों को मत समझाएं कि बाहर मत जाए, आप अपने बेटों को तमीज सिखाएं।
0: मानसी, क्या आप कोई किस्सा बताना चाहते हैं या जो आपके किसी करीबी के साथ हुआ हो या जो आपके खुद के साथ हो चुका हो?
3: इसे मेरी बेवकूफ़ी कहूँ, बेवकूफ़ी, मासूमियत या फिर बहादुरी, ये तो नहीं पता, पर बचपन से मेरे दिमाग में ये कभी नहीं आया कि मैं लड़की क्यों। इसीलिए मुझे अंधेरे में अकेले बाहर नहीं निकलना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, इस टाइम नहीं जाना चाहिए, या फिर किसी ना किसी का साथ होना चाहिए। घर से दूर किसी अजनबी शहर में किसी भी वक्त अकेले ही बाहर निकल जाया करती थी। अंधेरों से मुझे कभी डर लगा ही नहीं, रास्ते मुझे याद नहीं रहते थे, इसीलिए 2-3 बार ऐसा हुआ जब मुझे पहुंचाना नहीं और था और पहुंच गई कहीं और। एक बार वक्त था सुबह के 6 बजे और एक बार वक्त था रात के 10 बजे, पर डर कभी नहीं लगा। एक बार लाइट चली गई थी, बारिश हो रही थी, रात के 10 बजे थे, बाहर एकदम भयंकर अंधेरा था। अगले दिन एग्जाम था और मैं अकेले ही कैंडल लेने के लिए एक शॉप पर चली गई। रात के 2-3 बजे भी मुझे अकेले बाहर जाने को कहा दिया जाए तो भी मुझे डर नहीं लगता, और यह वह एरिया था जहां पर ज़्यादातर कॉलेज के स्टूडेंट्स रहते थे, जिनमें कई बिगड़े हुए शहजादे भी थे। जब छोटी थी तब भी परीक्षाओं के समय अक्सर रात के 2:30-3 बजे तक खुले छत पर अकेले पढ़ती थी, जब सब घर वाले सो जाते थे। चोरों का भी डर नहीं लगता था, शायद वो मासूमियत और बचपन था जिसकी वजह से मैंने दुनिया और दुनिया वालों को हमेशा सकारात्मक नजरियों से देखा। अनिष्ट की आकांक्षाएं कभी हुई ही नहीं और भाग्य से नहीं, कुछ बुरा हुआ भी नहीं। यहाँ मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि लड़कियों, छेड़खानी, लड़कों की उल्टी सीधी हरकतों को बिल्कुल भी नजरदाज मत करो। जब हम इग्नोर करते हैं तो ऐसी हरकतें हमारे साथ बार बार होगी और हम दुनिया समाज की परवाह किए ये बगैर तुरंत अपना विरोध प्रकट करते हैं। तो यकीन मानिए, ना केवल हम अपना भला कर रहे हैं बल्कि कई और लड़कियों को भी भला कर रहे हैं। और हाँ, बेवकूफ़ी वाली बहादुरी नहीं दिखानी है, सावधान हमेशा रहना है।
0: वाह मानसी, उससे हम बहुत सीख ले सकते हैं। मैं हूँ आपकी आरजे जया और आप सुन रहे हैं MOP कम्युनिटी रेडियो 107.8 FM। अब हम आपके सामने एक गाना प्रस्तुत करेंगे जो आपके दिल को छू जाएगा। यह गाना सत्यमेव जयते का है।

0: आज आज़ादी के बाद भी लड़कियां आज़ाद नहीं हैं। इस छेड़खानी का लड़कियों के मानसिक संतुलन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। श्रुति, आपको क्या लगता है इसका लड़कियों पे क्या असर पड़ता है?
1: इसका लड़कियों की मानसिक संतुलन पर बहुत बुरा असर होता है। लड़कियां अपनी हत्या भी कर लेती है, वो आत्महत्या पर भी उतर जाती है। कुछ लड़कियां अपने कमरे में बंद रहती है, ना किसी से बात करती है, ना बाहर जाती है, ना अपने दोस्तों से बात करती है, ना अपने स्कूल, ना कॉलेजेस और कहीं नहीं जाती है। वो अपने आप को उस चार दीवारी, अपने कमरे की चार दीवारी के अंदर महफूज समझती है। उनको ऐसा लगता है अगर वो बाहर जाएंगी तो उनके साथ वापस कुछ बुरा ना हो जाए, इसीलिए वो अपने कमरे में रहती है।
0: मैं हूँ आपकी आरजे जया और आप सुन रहे हैं एमओपी कम्युनिटी रेडियो 107.8 FM। आज भी दोषी खुलेआम घूम रहे हैं। वो लड़कियां कमरों में बंद है बट वो दोषी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उस दोषी को किस तरह सजा मिल सकती है, रितिका, हम ये आपसे जानना चाहेंगे।
1: हमें लड़कों को एक साल, कम से कम एक साल की सजा देनी चाहिए। उनको जेल में रखना चाहिए। उनको पता होना चाहिए एक लड़की के मानसिक संतुलन पे क्या असर होता है जब उसको छेड़ते हैं। उसका बलात्कार, अगर कोई लड़का एक लड़की का बलात्कार कर दे तो उसे फांसी की सजा देनी चाहिए। उनको ऐसे ही आजाद नहीं घूमने देना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि लड़कियां भी उनके समान हैं। लड़कों को लड़कियों की आदर करना चाहिए। अगर लड़के लड़कियों का आदर नहीं करेंगे तो उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए।
0: सुमन, आपको क्या लगता है इस परेशानी का कारण कौन है?
2: इस परेशानी का कारण वो लड़के हैं जिनको लड़कियों खिलौना लगती है और उनकी इज्जत करना नहीं जानते।
0: भाविका, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस परेशानी को काफी हद तक रोका जा सकता है, बट क्या आप बता सकते हैं कैसे?
3: लड़कियों को खुद की रक्षा करना आना चाहिए। हर वक्त अपने साथ पेपर स्प्रे लेके घूमना चाहिए। और जिस तरह लड़कियां लड़कों की इज्जत करती है, उसी तरह लड़कों को भी लड़कियों की इज्जत करनी आनी चाहिए। और लड़कियों को हमेशा हर वक्त सावधान रहना चाहिए।
0: अब आपको रितिका बताएगी कि छेड़खानी किस संख्या में हो रही है।
1: हमने जब लड़कियों से पूछा कि कितनी लड़कियां शारीरिक शोषण और छेड़खानी का शिकार हुई है, तब हमें 55.4% हाँ मिला और सिर्फ 46.6% ना। मतलब छेड़खानी हर इस देश में हर मिनट में एक लड़की तो छेड़ी जाती है। और भारत देश में 848 लड़कियों का रेप और उन्हें हरास हर रोज किया जाता है। WHO के अनुसार हर 20 मिनट में एक लड़की का बलात्कार होता है।
0: यह संख्या सुन के ही बहुत भयानक सा महसूस होता है।
4: अगर एक औरत एक लड़की को जन्म दे सकती है तो उसमें इतनी शक्ति भी होनी चाहिए कि वो द्रौपदी बनकर अपनी रक्षा कर सके।
0: तो मैं हूँ आपकी आरजे जया और मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। हमें यह उम्मीद है कि आपको इससे कुछ सीख मिली हो और आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो। आप सुन रहे हैं MOP कम्युनिटी रेडियो 107.8 FM। आर रेडियो, आर कम्युनिटी, आर प्राइड। धन्यवाद।

0: Good evening. Myself, Akshaya, and Abhinaya from 2nd BCom Accounting and Finance, Shift 1, are here to present a song on the eve of spring season.
1: आइए वसंत का आह्वान करते हैं श्री नित्यानंद शुक्ल नीरव जी की इस कविता के साथ।